0: ये मंदिर अच्छे है ना?
1: हाँ जी, मंदिर बहुत सुंदर है ना?
2: हम आपके रेनकोट फैमिली वर्द रहा।
1: नमस्ते।
2: बिस्ते।
1: इस मंदिर का पंडित कौन है?
2: कौन है सामान? अद पंडित का मतलब कोयल के बेली उपाग।
1: नहीं बेटा।
2: बेटा एंग मात्र रानग। ये ला मासा चमरना। अद पोंगल ही पुड़ी रेनबुट कलच पुरान गया माँ।
0: वो कौन है?
2: यार अबरा। और
3: ए नलर नलर। ना मडपुड़ी वरेकी पोइट वंदरन।
2: वेणु शास्त्री वेणु शास्त्री।
0: अच्छा वेणु शास्त्री।
2: आमा आमा।
1: इस बच्ची का बर्थडे है। पंडित चाहिए है? पूजा कराना है। पूजा
2: पूजा कराना है। இருங்க சொல்றேன். ஏப்பா திருநாகர்சே உன்ன தேடி ஒரு இந்தி ஃபேமிலி வந்திருக்கு. உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணுமா? வா
3: கேட்டு வந்துரு.
2: எம்கா மாணிக்கு இன்னைக்கு இருக்கு உனக்கு
3: என்ன?
2: உன்ட்ட ஏதோ பேசணுமா?
1: நமஸ்தே.
0: நமஸ்தே.
1: ஹம் சவுத் இந்தியா டூர் பண்ண நிக்கலே ஹே.
2: जन्मदिन
1: है तो मंदिर से बोला पूजा करवा ले।
3: अच्छा आप हमारे टेम्पल में आए हैं, बहुत खुश हुआ।
1: आप अच्छी तरह हिंदी बोलते हैं।
3: हम हिंदी तो जानते ही हैं। अच्छा बेटी तेरी जन्मदिन है? क्या नाम तेरा?
1: मुस्कान।
3: मुस्कान बहुत प्यारी नाम है। अच्छा बेटी की नक्षत्र क्या है?
4: पूसम।
3: वेरी गुड स्टार, शी विल बिकम वेरी बिग हीरोइन। तू तो आयशर राय बन जाएगी।
4: बेटा व्हाट्स द नेम ऑफ द टेंपल?
3: ये तो शाचना टेंपल है।
4: हु इज द मेन गॉड?
3: लॉर्ड शिवा।
4: या अच्छा अच्छा
3: अच्छा चलिए पूजा करवा देंगे। ए वहां क्या देख रहा है? काम कर, साफ कर, मंदिर को साफ कर, बेल मार बेल। चलिए आप चलिए।
2: எல்லா மூலியும் பேசுறா
3: यार इवाला। இவங்க வடநாட்டல இருந்து வந்திருக்காங்க। ஏ மந்திர கா பட பண்டிட है வேணு சாஸ்திரி जी।
0: வேணு சாஸ்திரி
3: का? हां जी।
1: ये लड़का कौन है?
3: ये हमारा मंदिर का बेल बॉय है।
1: बेल बॉय?
3: हां जी।
1: ये तो बैड बॉय है।
5: इन्ने पतिया वाले तो सुली रखा है।
3: आइए पूजा करेंगे।
2: बैड बॉय என்ன? बैड बॉय ன்னு போறாளே அப்படினா என்ன?
5: அதாவது இந்த உலகத்திலேயே ஒண்ணா மாதிரி அயோக்கிய பய